0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

Namaste. आज अपनी फेर आवेर भाई मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी मुंह चुनकिरी बिचारा अलसम मले बात पर ही बसी रोले मुंह बजा दूँ कुत्ते खत्म हो गया ने तिला जार जगर माचे रहा कुत्ते मले ये ला ओ पोस्टिंग मेरी बुढ़ी बुढ़ी बंदर इस चले ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू माय सातो पुतलो फ्लाइंग आफ्टर सी यू अंग्रेजी बुझ्दैन तलाई देखेर सातो पुतलो उड्छ भने

आर खाएनी सब खाएनी रक्सी बने रक्सी नीचे आके रक्सी सबके होटल बाल में पुग जी।

देखो आइंदा जो इसको हर तक प्रयोग होने मेरे को फैंस ने बुलाए तो सीधे निश्चय कर सकूँ बुरा बुझो बस इनको नहीं देना।

0: इन्द्रणी फार्मेसी एन्ड थाइराइड डायग्नोस्टिक सेन्टर, चरीकोट बीच बजार, भेटेरिनरी अस्पताल अगाडि।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म पदे प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्मत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 अगस्त 5 तारीख श्रावण 20 गते बुधवार सप्तमी तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।

सारी छया हुन राजा नौशकाय सारी दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समा

धर्म कुमार कैसरिया हो श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान हव शिशु जन्म मनुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल हो श्रुत सहित का।